नमः। ओम श्री साई साधु मानस परिशोधकाय नमः। ओम श्री साई साधकानुग्रह वटवृक्ष प्रतिष्ठापकाय नमः। ओम श्री साई सकल संशय हरा

0: आस प्रभु हे गिरिधारी
1: सूरदास प्रभु हे गिरिधारी
0: सूरदास प्रभु हे गिरिधारी।